0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गए, शान रिसालत मौला।

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनु खैर पे है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें।

ऐसा नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई में किया है जब सारा सफर दबेड़ा।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हा, 3135525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए छो छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थो यो किसो ता के आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुजो महबूब मुजो कुले कांधी थे ओ मुजा

ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਮੁੰਜੇ ਮਥਾ ਮੌਤ ਆਇਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਛਾ ਚਵੰਦਸ ਉਹ ਤੇ

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: नतीन सगी आए टेक्निकल सतह ते गालन जो पेरियो दौर हालतों ठीक थेना ताई जारी रह सके तो तारीख ए जगह ते इत्तेफाक थी वेंदो। साल्स मुल्कन सा मुशावरत जो सिलसिलो जारी आए। आबना हरम्ज बाबत ईरान ए अमान जी कमेटी भी गडजाणी ते हरम्ज बाबत मुशावरत कई वई।
2: ईरान कतर में मंजमंद कयल 12 अरब डॉलर्स जी ईरानी असासन मां 6 अरब डॉलर्स जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पशेकियान जो चवण हो त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर्स मां 6 अरब डॉलर्स जारी थियण घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे।
1: वज़ीर आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल जोड़ ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म जी हिदायत हेठि वज़ारत ख़िज़ाई तहफ़ुज़ ऐं ज़रई शोबे में सुधारण बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर आज़म सूबनि जे मशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल जोड़ण जो शोबो जटादड़ मुआशी तरक़ीअ में आम किरदार अदा करे सघे थो। AI जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघिजे थो।
2: नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करण चाहे थो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामिलो आहे, रंडक क़बूल न कई वेंदी। सिदसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे मुअतल नथो करे सघिजे। सिंतास मुआहिदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजी पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ कटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।
1: सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटीअ जे इजलास में कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकीअ जो ज़िक्र। DIG साउथ कराची असद रज़ा पारां कमेटीअ खे पिंकीअ केस बाबति ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो चयो त पिंकी सिंध में रही त खेसि कुझु न थींदो, ईंदड़ साल पिंकीअ खे सदारती अवार्ड मिली वेंदो। अनमोल उर्फ पिंकीअ खे त वज़ीर आज़म खां बि वधीक प्रोटोकॉल ॾिनो पियो वञे। पतो लॻायो वञे त पिंकीअ जे पोयां केरु आहे।
2: हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे नतीजनि में मुबैना बेज़ाब्तगिन ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाजी मार्च ऐं धरणो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि गॾियल तौर ते एहतजाजी मार्च करे धरणो हयो। चटाभेटी इम्तिहान जे नतीजनि में फेरफार करे मनपसंदि रिश्वत एवज़ उमेदवारनि खे पास करण जो बि इल्ज़ाम। मुज़ाहिरीन मूजिब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन साख विञाए चुको आहे, पंहिंजा नवाज़ी वारो सिलसिलो बंदि कयो वञे।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। यूर शेयरिंग इंटर टू योर रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप लोग? शुक्र जी, जहाँ जहाँ भी मौजूद हो, बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एकदम एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरे पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपको मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक।
1: ही प्यार है, प्यार है।
0: तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो वक्त हुआ जाता है 11:18 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है। तमाम तलू की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक में है, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट धन्यवाद, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। जिन लोगों का बर्थडे है उनको कहेंगे मैनी मनी हैप्पी रिटर्न सैटरडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको जाएंगी मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा।

0: que yo solo te traigo. Quitar todo que no está mal en el caño de rayo.
1: ओके दुश्मन खुश करे छड़ी।
0: ये अलिया कुमार रिंदे
1: किसका गाना है?
0: ये अलिया कुमार रिंदे के आवाज में शायरी मेरी है।
1: ओके मैं इसको सर्च करती हूँ जी। ओके और कुछ कहेंगे?
0: बस अल्लाह आपको खुश रखते तो आपका परिवार सुनते हमारा दिल खुश हो जाते हैं। आप हमारी कॉल में शामिल करते हैं, मैसेज शामिल करते हैं।
1: ओके ये किसका गाना बताया आपने?
0: अली अकबर इंद।
1: चलेंगे जी मैं बिल्कुल सर्च कर रही हूँ जी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और

0: Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में या तीन तरीके कार से, जो कि आप कर भी रहे हैं तो जरूर करें। और कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद हैं, सुर लगाओ गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सागर बात कर रहा हूँ।
0: सागर भाई, आवाज आ रही है?
1: पहचान लेती आज नहीं पहचान है,
0: आज आपकी आवाज कुछ मुख्तलिफ लग रही है।
1: अच्छा अच्छा,
0: ये अच्छा अच्छा से पता चल रहा है बस।
1: चलो पता तो चला।
0: चले अच्छा, कोई गाना सुना दे अच्छा सा।
1: अच्छा चोरी चोरी तेरे लाल अखां है, चोरी चोरी तेरे लाल अखां है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना है, चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां है, चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां है।
0: ओके, किसका गाना है ये?
1: ए, तो पाकिस्तानी है मैम, पता नहीं गाया किसने।
0: ये गाया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, तो असल में ये गाया है रेशम ने। प्ले कर दें
1: जी,
0: प्ले कर दें यही वाला।
1: ओके डन कर दें।
0: चलिए जी डन करते हैं। और कुछ कहेंगे?
1: और सेगमेंट क्या है?
0: क्या है? टंग ट्विस्टर।
1: टंग ट्विस्टर,
0: टंग ट्विस्टर, वो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद।
1: तो नहीं बैठक नहीं चल रहा है, मैं खरपुर बैठाऊंगी, इधर एटम नहीं चल रहा है,
0: तो वो मैं ऑनर बताऊंगी ना।
1: नहीं बताऊंगी,
0: अभी गाने के बाद बताऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर दोबारा मैं कॉल करेगा।
0: ओके जी, थैंक यू।

ओके आज का टंग ट्विस्टर बताने जा रही हूँ। आज का टंग ट्विस्टर ये है कि लेला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई। ठीक है, ये कहना है लेला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई। और इसको आप अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद, दैट इज बोलो तो माने, उसमें ये टंग ट्विस्टर आप कह के दिखा रहे होंगे कि लेला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई। ठीक है, तो ये करेंगे इसी के साथ एक और गाना भी प्ले करेंगे।

पाकिस्तान जे लाइ पाणी रुगो कुदरती वसीलो न पर ज़िंदगीअ जो मसइलो आहे। सिंधु दरिया जे पाणीअ ते पाकिस्तानी क़ौम खे मुकमल हक़ हासिल आहे। पाकिस्तान जो पाणी रोकींदड़ खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। इस्लामाबाद में सिंधु तास मुआदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे सुस्तमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सिंधु तास मुआदे ते पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। सिंधु तास मुआदे खे ख़तम या इन में तरमीम नथी करे सघिजे। पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहे। कतर जे शहर दोहा में अमेरिका ईरान जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाक़ात थींदी या न? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाक़ात थियण जी दावा, ईरान जो इनकार। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान सां हलंदड़ हफ़्ते थींदड़ कतर में इजलास अहम साबित थी सघे थो। ईरान एटमी हथियार न रखण ते बि राज़ी आहे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ वापस आ चुके हैं जी एक अदद ब्रेक से और हमारा सेगमेंट दैट इज बोलो तो माने में आप लोग एक अदद टंग ट्विस्टर बोल के दिखाएंगे और वो जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम ये प्ले कर लें उसके बाद बताती हूँ।

और कंटेस्ट ये है कि लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई। लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई, ये कहना है।

0: Okay. Very nice. Call receive karne ja rahe hain. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun kahan se? Gazi Khan Rin bhai, tongue twister se na bolenge.
1: Ji ji bolenge.
0: Bolenge to bole.
1: Farz mein bataye ya aise bataye?
0: Kis mein bataye?
1: Farz mein, dhun mein.
0: धुन में बता सकते हैं आप?
1: हाँ जी बता सकते हैं.
0: तो बता दें.
1: लैला ने लाल तीने लंबी लकड़ी पर लटकाए.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप. लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई.
1: लाल लाल लंबी लकड़ी पर लटकाई.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं है. लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई. यस. क्या बात है, क्या बात है. ओके, कुछ और कहना है?
1: आज मेरा गाना अपने नहीं किया तुमने.
0: कौन सा वाला?
1: ये सुषमा ने कुछ करे जी.
0: ये कल बताया था आपने मुझे?
1: आज ही बताया था, पहले नहीं.
0: अच्छा, चले मैं बिल्कुल सर्च करती हूँ. अच्छा, कौन सा गाना था आपका? चले ये मैं प्ले करती हूँ जी. इंशाल्लाह आपके लिए. थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. 03000111348.

0: next caller. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
1: प्यारी यार जी सईद अहमद बात कर रहा हूँ.
0: सईद अहमद कैसे ठीक ठाक?
1: जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक. आप सुनाओ ठीक हो खैरियत है?
0: जी खैरियत है. मुझे बताइएगा टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे?
1: हाँ प्यारी यार जी सुना है बिल्कुल सुना है और बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हैं और आप आज प्रोग्राम सुन रहे हैं. इतने अरसे प्यारी यार जी कहाँ गई थी आप?
0: मैं इतने अच्छे से मैं जरा घूमने गई थी पहाड़ों में.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह टूर लगाने की तैयारी आ रही है?
0: हाँ जी बस अब हमने टूर लगाना शुरू कर दिए.
1: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया. आप घूम फिर कर माशाल्लाह वापस आ गई ना अपने शहर में.
0: हाँ जी बिल्कुल अपना शहर तो अपना ही होता है ना.
1: बेशक जी बिल्कुल ये तो है.
0: बिल्कुल ऐसा ही है तो
1: अपना घर और अपना शहर तो सबसे प्यारा होता है ना. जी चाहे बंदा कहाँ भी चला जाए जो अपने घर में और अपने शहर में सुकून मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा.
0: कहीं भी नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली वेरी नाइस वेरी वेल सेड. और कुछ कहेंगे? ओ सॉरी
1: आपको टंग ट्विस्टर सुनाना चाहूँगा.
0: टंग ट्विस्टर बोले.
1: लैला ने लाल ट्रेन पर लंबी लड़की लटकाई.
0: नहीं लैला लड़की नहीं लड़की कैसे लटकी?
1: सॉरी यार जी वो थोड़ा जल्दी में कह कर गया ना इसलिए.
0: आपने पहले ना मुझे एक एक बार गौर से सुना. लैला ने लाल लालटे ने लंबी लकड़ी में लटकाई. यस
1: लैला ने लाल टेन लंबी लड़की पे लटकाई.
0: लड़की पे नहीं लकड़ी पे.
1: ओ लकड़ी पे लकड़ी पे. लैला ने लाल टेन पर लंबी लकड़ी पर लटकाई.
0: नहीं
1: लैला ने लाल दिन लंबी लकड़ी पर लटकाई.
0: नहीं नहीं नहीं गलत कह रहे हैं कुछ और कहेंगे?
1: हाँ बस आज जी माशाल्लाह आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और सुन रहे हैं हम भी बड़े शौक से.
0: थैंक यू अल्लाह हाफिज़. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.

0: next caller. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. Dua ka world tongue twister bol do.
1: Itni jaldi kya?
0: Haan, itni jaldi.
1: So, jawab hi karni hai.
0: Haan ji, main tongue twister leke khadi thi aapke liye. Jaise hi aayenge maine bola. Haan ji.
1: Lela ne laal laal laal tene lambi lakin ke ladkai. Lela ne laal laal laal tene lambi lakin ke ladkai. Lela ne laal laal laal tene lambi lakin ke ladkai. Lela ne laal laal tene lambi lakin ke ladkai. Aur bhi.
0: Okay, very nice. Bahut acha.
1: Acha suno. Oye.
0: Haan ji, haan ji. Oye.
1: Mera gaana kitna kiya kaun ka?
0: हाँ ओए कौन सा गाना बताए ना सादगी तो हमारी जरा देखिए अगर इसकी जगह में अमानत अली का ही एक और अच्छा सा गाना सुना दूं तो क्या होगा
1: चलो कोई न्यू
0: न्यू न्यू होगा गाना पुराना होगा लेकिन न्यू वर्जन में होगा क्या ख्याल है
1: चलो ठीक है देखो
0: पक्की बात है सुन लेंगी
1: हाँ
0: ओके जी अभी प्ले करते हैं और ये रहा गाना
2: One place. Let's say you need to write a blog post about minimalism. Instead of getting in your head about it, you can go right to the AI chat in a new Grammarly doc and type, give me a starting place for a blog post about minimalism.

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 3135525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. आप मुझे कहते हैं आज ये रुखसार और लास्ट में कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के. अच्छा आज का टंग ट्विस्टर कितने किसने अच्छा अच्छा और सही सही बोला है वो साथ साथ आपसे शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी. तो आज के सेगमेंट के जो विनर है ना वो है जी गाजी खान रेंद और दुआ कवल. तो गाजी खान रेंद और दुआ कवल आप दोनों विनर्स हैं जी आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के. बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला. तो गाजी खान रेंद और दुआ कवल आज के सेगमेंट के विनर. साथ साथ कॉमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं. स्मार्ट किशोर कहते हैं हाय हेलो सॉरी सिर्स आज ये पोस्ट खुद मेरे सामने आई है. आपको पता है अगर पोस्ट मेरे सामने आ जाए तो मेरे हाथ मेरे बस में नहीं होते. ठीक है तो कमेंट करना कोई बुरी बात तो नहीं है. अगर पोस्ट सामने ना भी आए आप सर्च करके भी तो कमेंट कर सकते हैं. क्या रोक रहा है आपको, क्या है ऐसा जो रोक रहा है कमेंट करने से बताएं मुझे. पिटाई करेंगे हम उसकी पकड़ के.

नहीं करना चाहिए लास्ट में हमें. मेरे ख्याल से मेरे पास एक गाना लाइन अप है, अगर तो मुझे कुछ समझ आता है मैं जरा गाने इस तरीके से चेक करती हूँ, बताऊँ आपको. ऐसे चेक करती हूँ, चलो ये सुनते हैं लास्ट में, ठीक है. शुरू से प्ले करते हैं, अच्छा गाना है. ओके, सो फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिटचैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे तक. सुना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लव सिंपल बट थिंक हाई. So this is me, RG Rukhsar, signs out. Take care, goodbye, ba amani khuda, Allah Hafiz.

सिंध हाईकोर्ट जी आईनी बेंच जो वॾो फ़ैसिलो, 90 रुपयनि जे करप्शन वारनि रेफरेंसिस खे ॿीहर एहतसाब अदालत ॾांहुं मुंतकिल करण जो हुकुम, नैब जूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर, एहतसाब अदालतुनि जा गूणा फ़ैसिला कलदम करार, एंटी करप्शन या ॿियनि अदालतुनि ॾांहुं मोकिलियल रेफरेंस फौरी तौर एहतसाब अदालत ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम, एहतसाब अदालतुनि खे रिकॉर्ड मिलंदे ई करप्शन रेफरेंसिस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण जी हिदायत। इक़बाल ज़ैद अहमद, अली रज़ा, इफ्तिखार क़ाइम ख़ानी ऐं अहमद हयात समेत ॿियनि ख़िलाफ़ 90 रुपयनि जा रेफरेंसिस बहाल, LPG कोटा, नेशनल बैंक, KPT ऐं कराची में सरकारी ज़मीननि जी गैरक़ानूनी मुंतकिलीअ वारा केसिस बि हाणे एहतसाब अदालतुनि में हलंदा। अॻूणे IG सिंध ग़ुलाम हैदर जमाली ख़िलाफ़ नैब जी दरख़्वास्त रद्द, रेफरेंस लाॻापियल इदारे ॾांहुं मोकिलण जी हिदायत। सिंध हाईकोर्ट फ़ैसिले में चयो आहे त जेकॾहिं गैरक़ानूनी भर्तियुनि सबब मुलाज़मनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे त सरकारी नुक़सान जी रक़म ज़िमेवार आफ़िसर जे पघार या पेंशन मां वसूल कई वञे।

हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जो हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का गडल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उम्मीदवारन जो रिकॉर्ड पांजी तहवील में वठी छड़ियो। ज़रियन मुजिब सेशन कोर्ट जो अमलो रात देर सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी हेड ऑफिस पहुंची फेल उम्मीदवारन जे पेपर्स जी कॉपीज तहवील में वरतियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई। अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो, जंहिं बाद उम्मीदवारनि जो रिकॉर्ड ॾिनो वियो।

0: हैदराबाद में पुराणी दुश्मनी तां हथियारबंदन जो घर ते हमलो, हिक ॼणो कतल। नसीम नगर थाणे जी हद अली पैलेस वारी घिटीअ में हथियारबंदन घर ते हमलो कयो। फायरिंग में ज़हूर अली सोलंकी मारिजी वियो। पुलिस मुजिबि वाकियो पुराणी दुश्मनी तां पेश आयो आहे। वधीक जांच कई पई वञे। कराची जे इलाइक़े क्लिफ्टन में
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

सांसें तार दो तुमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मादली सकरण और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। जनाब प्रोग्राम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह से खूबसूरती ही खूबसूरती आपको मिलने वाली क्योंकि आप इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, क्या तरीकेकार होने वाले हैं और किस तरह से आप जो हैं वो इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को मेंटेन कर सकते हैं, खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम में आपका हमारा साथ रहता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती की बातें की जाती है और इसी के साथ साथ जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भाई आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, साथ ही साथ अपना भी तारफ करवाते हैं सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्राव के साथ मौजूद मुखातिब हो चुकी है।

ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जल्दी से अपने हाल चाल बताते जाइए. सो डियर लिसनर्स, अंतक ये हालत है, कैसे ही आपकी हालत है? उम्मीदन चली दिन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करें होंगे. तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली. आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक. ओके जी, तो रेडी शेडी हो जाइए फन करने के लिए, बातें करने के लिए और एंजॉय करने के लिए. इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आने के फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान. सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए. आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला. बिकॉज आली रे आली सिद्धर आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की समा लाने के लिए. बिल्कुल सही, आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं. आगा से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत प्यारी सी नाद के साथ. बहुत प्यारी सी नाद सुनते हैं प्रोग्राम के आगाज में, उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

वासु भाई हमारे साथ मौजूद है. वासु भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है. और चाचा खाले थोड़ी जो आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम बेटा से जो हवयो. मैं बिल्कुल मजे में, आप बताएं आप कैसे हैं. और कहते हैं कल क्यों नहीं आई, आई थी कल में, आई थी बाबा कल में आई थी. फेसबुक पर थोड़ा मसला था, फेसबुक लाइव नहीं था, कल मेरा शो था. मौलाई मुजाहिद 2000 हमारे साथ मौजूद है टूब चूसल से. वालेकुम अस्सलाम. मां ठीक आए? हाँ मां ठीक आया. तां बुधायो कीअं आयो? ठीक ठाक आयो. ऐं बुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया? रोज़ प्रोग्राम में शामिल थियो पिया, रोज़ प्रोग्राम ॿुधो पिया, पर प्रोडक्ट हणो था कोन. इहा त मूंखे ख़बर ई कोन्हे का. सो कहिड़ो प्रोडक्ट कहिड़ो माण्हू हणे पियो, इहो मूंखे ॿुधाईंदा हलो. ओकरी चाचा खालिद कहते हैं कल था ही नहीं हमारे, हाँ क्योंकि आप नहीं आई थी और आज तो आप आई हो, तो एंजॉयिंग योर शो, योर टॉपिक आंसर. अच्छा वासु भाई कहते अदी सिद्धो असा पांजी सीट ते अची वयासी, डाडो बल्लो कयव. जीशान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं. इजहार लाशारी को सलाम. और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं. मौलाई मुजाहिद बोजार बिल्कुल आपको गाना सुनाते हैं. इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद है. सोनो खान लाशारी मेरे खास से भाईजान हेलो. अच्छा ये इस गाने का नाम है इसीलिए आ रहा है, वरना इस गाने के अंदर जो कुछ बोल रहा है कख समझ नहीं आ रही. अरे समझ कुछ नहीं, लेकिन वाइब बड़ी है भाई, वाइब मजे की है. तो गाना बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रही है और साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ओके जी, लाली कहती है कि अदी वो एक है भीतर रड़ कयो, गरीब जो गुजारो थी वेंदो, वडो मिस करे व पई. अदी वो चाला तांजो खुश आयो, काफी टाइम खां पोइ तां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थी आयो. काॾे गुम थी विया आयो बाबा? ईअं न कंदा कयो, रोज ईंदा कयो, रोज रोज. और जीशान कहते हैं कि कल अगर ना होता तो आज में एक दिन का सीएम बनता. क्यों भाई सबको एक दिन का सीएम बनना होता है? ये बात मुझे समझ नहीं आई आज तक. ऐसा क्या ही कर लेंगे आप एक दिन के अंदर, बताइए जरा मुझे.

किशोर भाई आ चुके हैं. हेलो भाई, अदा सॉरी फॉर देर, इट्स ओके, जा तुझे माफ किया. फहद अली हमारे साथ मौजूद हैं. हेलो कहते अदी, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी. माशूक रिंद भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं सलाम टू मीर इरफान सियाल साहब. यू फॉरगेट माय रिक्वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट डी स्किन क्रीम सोप एंड फेस वॉश. डी स्किन का फेस वॉश और सिर्फ क्रीम आई है, तो आप उन्हें जिस नंबर के ऊपर मैंने बताया ना, रابطہ कीजिए, आपको जरूर मिल जाएंगे.

अरे भाई एक उम्र ही है जो बढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती, बाकी तो इनकम हो या फिर ये सारी चीजें बढ़ती अच्छी लगती हैं। तो बढ़ती उम्र अगर आपकी है और आपको अच्छी नहीं लग रही तो फिर आप वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकिए जरा और आप हमेशा यंग रहिए और जवान जवान दिखिए और इस्तेमाल करते रहिए वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और साथ साथ गुलाम कादर भट्टी हमारे प्रोग्राम में है, कहते हैं खास लोगों को सलाम मटियारी से, आप हमारे साथ ही प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है, सॉन्ग सुनेगा मेरे पास तुम हो।

我就离开我今天的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔अच्छा गाने इतने मजे के लगा दी हूँ, गानों के अंदर ना गुमी हो जाती हूँ. आपके मैसेजेस तो जरा उनको भी पढ़ लेते हैं. मोतिया सेठानी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. नबी दोस्त बलोच हमारे साथ मौजूद है, गुड शो, थैंक यू. चाचा खालिद कहते हैं जे खान रिजबो उनकी मिस कॉल कभी आना बाबा रिजो न रिजो ने पांचो मसलो बतायो. और हे अनवर भाई कहते हैं चापे की जिससे नाराजगी है उसे माफ कर दे, जिससे मोहब्बत है उसे बता दे, ईगो गुस्सा और वो पहली बात करे करें वाली बातें तब तक ही चलती हैं जब तक हम हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है. बिल्कुल जी, कितनी अच्छी आपने बात कर दी. देखे अच्छा बख्तली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं. हेलो किशोर भाई कहते सॉरी कॉल अच्छी वही हुई टॉपिक के वराय बुधाए टॉपिक यू आ असा खोड़ गालू जेकिन सुभाणे ते छडीना ना सुभाणे दो तसा ही कम करनासी सुभाणे ही थींदो सुभाणे हु थींदो त अगर फर्ज कयो सुभाणे थे ही ना त पोई तवा छा कंदा.

अदी वो कहती है कि मां तो रोज अचा पर या लाली कम थी करे रुगो असा सा भी सफा घट थी वे है सबनी के या शिकायत आ है या तमाई कुटकी दियो असा का जोर आए बिल्कुल मुझे हाथ लगी त मां जरूर नखे कुटकी दीदम या छोकरी सफा किनी दियो या सुधरी वनो पापा सुधरी वनो अक्ल से खो वडा थी गयो अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद है भाईजान वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद कहते हैं और फहद भाई आपको भी वेलकम करते हैं हेलो हेलो अनवर भाई कहते हैं असां के सिदरा बुधाईंदी आहे क्रीम जे बारे में यो ही काफी आहे हां नी तवां जे स्किन जो ख्याल आहे नी मां चवां थी ता सब सोना थी वनो नी समझो नी

ये गाना मेरी अम्मी का फेवरेट गाना है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दर्दे दिल कहते हैं कि जिसके साथ नेकी करती हूँ वो मुझे दरिया में डाल देता है, आजकल यही चल रहा है, तो कोशिश करेंगे समझ गई होंगी। आने पोस्ट को भी लाइक और शेयर कीजिए, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करना होता है, यानी कंजूसी न करना करो। और सी डाल करती रहिए 03-15-799-0595 नंबर से कॉल कयो या मैसेज कयो, उन्हनि खे ॿुधायो तव्हां किथे रहंदा आहियो ऐं तव्हांजे एरिया में नथो मिले वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट, वाइटिश ब्यूटी क्रीम नथो मिले, वाइटिश ब्यूटी सोप नथो मिले, वाइटिश फेस वॉश नथो मिले, वाइटिश लवली क्रीम नथो मिले ऐं वाइटिश जो डॉक्टर पिंपल एंटी एग्नी ट्यूब नथो मिले, समझो था। इहे सभु प्रोडक्ट तव्हां अवेलेबल करायो जीअं तव्हां बि सुहिणा थियो बाबा, तव्हां छो भला पोइ हिते रहिजो, सभु सुहिणा थी वञनि तव्हां न, इहो नाइंसाफ़ी आहे तव्हांजो, मां न चाहींदमि तव्हां सां नाइंसाफ़ी थिए, तव्हां सभु सुहिणा थियो, ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत रहो ऐं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा रहो। टाइम थियो आहे हाणे वञूं था न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, तव्हां काॾे न वञिजो, हिते वेठा हुजो, मां उहो हीअं वञी हीअं मोटा थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: इस्लामाबाद में सिंधुतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे सुस्तमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो आहे त सिंधुतास माहिदे ते पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। सिंधुतास माहिदे खे ख़तम या इन में तरमीम नथी करे सघिजे। पाणी खे एहतियात तौर इस्तेमाल करण आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहे। कतर जे शहर दोहा में अमेरिका ऐं ईरान जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाक़ात थींदी या न? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाक़ात थियण जी दावा, ईरान जो इनकार। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान सां हलंदड़ हफ़्ते कतर में थींदड़ इजलास अहम साबित थी सघे थो। ईरान एटमी हथियार न रखण ते राज़ी आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त अमेरिका माहिदे ते अमल कंदो त असां बि ज़िमेवारियूं पूरियूं कंदासीं। धमकियुनि ते असांजो मौक़िफ़ वाज़े आहे। सिंध हाई कोर्ट जी आईनी बेंच जो वॾो फ़ैसिलो, अरबे रुपयनि जे करप्शन वारनि रेफरेंसिस खे ॿीहर एहतसाब अदालतुनि ॾांहुं मुंतकिल करण जो हुकुम। नैब जूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर, एहतसाब अदालतुनि जा अॻूणा फ़ैसिला कलदम करार। एंटी करप्शन या ॿियनि अदालतुनि ॾांहुं मोकिलियल रेफरेंस फौरी तौर एहतसाब अदालतुनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। एहतसाब अदालतुनि खे रिकॉर्ड मिलंदे ई करप्शन रेफरेंसिस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण जी हिदायत। इक़बाल ज़ैद अहमद, अली रज़ा, इफ़्तिखार क़ाइमख़ानी ऐं अहमद हयात समेत ॿियनि ख़िलाफ़ अरबे रुपयनि जा रेफरेंसिस बहाल। एलपीजी कोटा, नेशनल बैंक, केपीटी ऐं कराची में सरकारी ज़मीननि जे गैरकानूनी मुंतकिली वारा केसिस बि हाणे एहतसाब अदालतुनि में हलंदा। अॻूणे आईजी सिंधु ग़ुलाम हैदर जमाली ख़िलाफ़ नैब जी दरख़्वास्त रद्द, रेफरेंस लाॻापियल इदारे ॾांहुं मोकिलण जी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट फ़ैसिले में चयो आहे त जेकॾहिं गैरकानूनी भर्तियुनि सबबि मुलाज़मनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे त सरकारी नुक़सान जी रक़म ज़िमेवार आफ़िसर जे पघार या पेंशन मां वसूल कई वञे। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहान ऐं नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां दरख़्वास्तगुज़ारनि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश। अदालत पारां दरख़्वास्तगुज़ारनि जे कॉपीज़ जी ॿीहर चेकिंग जे लाइ 5 रुकनी कमेटी जोड़ण जी तजवीज़। अदालती तजवीज़ ते एडवोकेट जनरल सिंध जो एतिराज़, दरख़्वास्तुनि ते मेरिट तहत फ़ैसिलो करण जी सदा। एडवोकेट जनरल चयो त पहिरीं दरख़्वास्तुनि जो ॿुधण जो हुअण बाबति फ़ैसिलो कयो वञे। अदालत चयो त सच जो साथ ॾियो, नौकरियूं अचणियूं वञणियूं आहिनि। मामले खे हमेशा लाइ हल करण जे लाइ गाइडलाइंस जारी कई वेंदियूं। जस्टिस पैसा वठी कुझु माण्हुनि खे पास कयो वञे थो। जांच जे लाइ मामिलो नैब ॾांहुं मोकिले छॾियूं था। जस्टिस सलीम जेसर चयो त अदालत में बीठल सभु रोई रहिया आहिनि त नाइंसाफ़ी थी आहे। हिकु साहिबु आयो हो जंहिंखे लिखण बि न अची रहियो हो। मामिलो कमेटी ॾांहुं मोकिलियूं था, पास थींदड़ खां इम्तिहान वठंदी। पास थींदड़ सिंधी या उर्दू में बि मज़मून लिखी रही सघनि था। हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उमीदवारनि जो रिकॉर्ड पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। ज़रियनि मूजिबि सेशन कोर्ट जो अमलो राति देर सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस पहुची फेल उमीदवारनि जे पेपर्स जूं कॉपीज़ तहवील में वरितियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई। अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकमनि ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो, जंहिं बाद उमीदवारनि जो रिकॉर्ड ॾिनो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में 3 ॼणा क़तल। हैदराबाद में पुराणी दुश्मनी ते हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो, 1 ॼणो क़तल। नसीम नगर थाने जी हद अली पैलेस वारी घिटीअ में हथियारबंदनि ज़हूर अली सोलंगीअ खे क़तल कयो। जेकोबाद वासी नौजवान कराचीअ में क़तल। चनापाड़े वासी नौजवान परवेज़ अहमद कटो खे शाह लतीफ़ टाउन में क़तल कयो वियो। हिंगोजा वेझो फुर मज़ामत ते मुमताज़ मारवाड़ी क़तल। हिंगोजा पुलिस पारां फोरुनि जो पीछो करे 2 जवाबदार गिरफ़्तार करण जी दावा। उमरकोट वेझो स्कूल जी भिति किरी पई, 3 ॿारियूं दॿिजी फौत। ॻोठ कमोरी में भिति किरण सबबि सोगरा धीउ अबू बकर, किंज़ा धीउ अब्दुल समद ऐं रायबा धीउ फारूक कोरी दॿिजी वियूं। ॻोठाणनि ॿारनि खे भिते सां कढी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुचायो। डॉक्टर्स पारां फोतगी जी तसदीक। ॿारनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। ज़रई पाणीअ जी खोट ऐं चोरीअ ख़िलाफ़ नवाबशाह, टंडोबागो ऐं फैज़गंज में आबादगारनि जो एहतजाज। नवाबशाह में दौर तालके जे मनोहर ऐं सकरन शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। टंडोबागो में नवमाणिक वाह जे आबादगारनि बदर चौक ते धरणो हयो। फैज़गंज में अलीगंज शाख जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सदन चवण आहे त वाहन ऐं शाखनि जे पुछड़ीअ में पाणी नाहे पहुतो, फसल सुकी रहिया आहिनि, पुछड़ीअ जे आबादगारनि जो मुआशी कतल बंदि कयो वञे। अवामी तहरीक 12 बारनि जे अॻवा ऐं पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। संदो मोहम्मद ख़ान जुदू ऐं तंगवाणी में मुज़ाहिरा। टंडो मोहम्मद ख़ान में अलपता चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो वियो। जुदो में एहतजाजी रैली कढी बैंक चौक ते धरणो हयो वियो। तंगवाणी में कारकुननि एहतजाजी रैली कढी। अॻवाननि जो चवण आहे त पाणीअ जी खोट सबब गुरबत ऐं बेरोज़गारी में वाधि थी रही आहे। गुम थियल ॿारनि खे बाज़ाब कराए सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे। डिपलो में पीअण जे पाणी जो बहरान संगीन थी वियो। मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जो एहतजाज। अवामी तहरीक, जमात इस्लामी ऐं जेवाई जे कारकुननि बदीन रोड ते धरणो हयो। अॻवाननि जो चवण आहे त डिपलो वासियुनि खे ॿियूं सहूलियतूं त नथा ॾेई सघो, घटि में घटि पीअण जो पाणी त ॾियो। 3 महीननि खां मिठो पाणी नाहे मिलियो। ऐं दया खान वरी वेझो 3 ॿारनि जी माउ हथियारबंदनि सां मुबैना अगवा। मदामत ते 3 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ जाम खान खोसो मां हथियारबंद रशीदा खोसो खे अगवा करे फायरिंग कंदा फरार थी विया। मदामत करण ते औरत जो मुड़ुसु करम खान खोसो, आयो खान खोसो ऐं हिकु औरत ज़ख़्मी थी। ॻोठाणनि जो वाकिए ख़िलाफ़ एहतजाज। औरत खे बाज़ाब कराइण जो मुतालबो।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर मैसेज माध्यम है सबको कहते हैं वेलकम इनको खुशामदीद, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में सवाल ये पूछा, यानी कि टॉपिक ये है कि फर्ज कर लें कि अगर कल ना होता तो आज आप क्या करते. क्योंकि अक्सर लोगों को हमने देखा है जो भाई, मैं खुद ही अगर अपनी बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे बहुत से काम है जो कि मैं कहती हूं कि भाई कल करेंगे, कल देखा जाएगा. तो अगर कल आता ही नहीं, कल होता ही नहीं तो फिर क्या कहने वाले थे हम, क्या करेंगे आप. ओके जी, शामिल प्रोग्राम होते जाइए 888 और फेसबुक पर बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से हमें सुन रहे हैं ये भी बताइए, और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताइए, और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भी बताइए. और साथ साथ डायल करते जाइए 03 15 799 0595. ठीक है जी. और अगर जिक्र किया जाए यहां पर प्रोडक्ट का, तो अभी आप लोगों को बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर हम आते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और दो फेस वॉश आपको मिल रहा है. अब ये दो प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने क्या करना कि अब सिलेक्शन नहीं होगी. हाँ जी, क्योंकि फेस वॉश भी जरूरी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी जरूरी है, तो दोनों चीजें इस्तेमाल कीजिए. और इसी के जो कि भाई अपनी स्किन होते हैं काफी बड़ी सेंसिटिव है, हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो उनके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है मार्केट में. अब मैं ये कहती हूँ कि भाई सेंसिटिव स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल जिनकी स्किन हो, नॉर्मल टाइप हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, या फिर मतलब मुख्तलिफ हो सेंसिटिव स्किन से, तो वो ये कहें कि भाई असां जलाए क्रीम ना असां तो न लगाईंदासीं. बाबा तव्हां भी लगाए सघो था, सेंसिटिव स्किन वारा भी लगाए सघनि था, हर कोई इस्तेमाल करी सके थो. छो त ही ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे. ऑल स्किन टाइप वारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा कयो जे तव्हांजी हर स्किन जेका आहे न उहा रिलैक्स रहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे रिज़ल्ट मिलंदो रहे, तव्हांजी स्किन स्मूथली जेको आहे न उहा ख़ूबसूरत थींदी रहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका वाइटमिन ई बीट्स सां तयार थियल आहे, हिन जे अंदरि माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे सिर्फ़ ॿिनि रातिन जे इस्तेमाल में रिज़ल्ट ॾियण वारी आहे. सो ॿिनि रातिन जे अगरि इस्तेमाल में तव्हांखे रिज़ल्ट मिले थो, बाबा ॿियो तव्हांखे छा खपे. सो तव्हां ज़रूर इस्तेमाल कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बणाईंदी, ब्यूटिफुल बणाईंदी, ऐं तव्हांजी स्किन हमेशह शाइन कंदी रहंदी. उन खां अलावा सिर्फ दो दिनों में जो है ना वाज़े आपको रिजल्ट देने वाली है, बहुत ही अच्छी है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जो कि एक नाइट क्रीम है. इसे आप इस्तेमाल करके देखिएगा, जदीद अज्जा से तैयार की गई, जिसके अंदर अल्फा आरबोटीन शामिल है, कोजिक एसिड शामिल है, ग्लूटाथायोन है, और उसके अलावा रात भर आपकी स्किन के ऊपर ये बेहतरीन सा काम करती है, जब भी जाकर आपको दो रातों में बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है. तो लाजमी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और साथ में लगाइएगा डी स्किन फेस वॉश. और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज

करता है और इतनी सारी क्वालिटीज के साथ साथ जब आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करते हैं तब आपको मिलता है बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट। तो आप इस्तेमाल करके देखिए, खूबसूरतियां हासिल करती रहिए और खूबसूरत होते रहिए। ओके जी, साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डायल करती रहिए 03-15-799-0595। ये नंबर आपकी सहूलत के लिए है, इसके ऊपर कॉल या फिर मैसेज कीजिएगा, उन्हें बताइए कि आप भी लेना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप भी परचेज करना चाहते हैं, अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो वो जल्दी से आपके एरिया में अवेलेबल करा देंगे। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। ओके जी, तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, फेसबुक वाली ऑडियंस हैं, तो पोस्ट को लाइक को शेयर करते जाइए। और यहाँ पर ऐसा है, मैंने ये सोचा है कि हम एक दिन कॉल्स पे करेंगे, दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन कॉल्स पे करेंगे, यानी कि हिकड़ी नहीं है जो गैप हूं असान प्रोग्राम में। सो अस कल कॉल्स वतियों से असा वरी कॉल्स न वी और सुबह कॉल्स वासी, ठीक है। सो ये हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल की जाने बातें तो आपके काफी मैसेजेस जमा हो चुके हैं। तो मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते बाजी वाइट एश ब्यूटी शो नाइस आहे और वाइट एश ब्यूटी क्रीम भी नाइस आहे, मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। और कहते हैं अब्दुल्ला महर के हमारे साथ हैं जी शुएब महर भी हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं वकास अली फ्रॉम लाड़काना, कहते प्लीज सॉन्ग्स हो विजरी। चलें, गानों की फरमाइशें तो काफी सारी आ चुकी हैं प्रोग्राम में, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके गाने लगाते जाएंगे जी टाइम टू टाइम, ताकि हम गाने एंजॉय करते रहें। और वकास क्या कहते हैं, गाना ठीक है और डेडिकेट किया ऑल स्वीट लिसनर्स के नाम। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। रसूलाबाद से आबिद हुसैन शम्बानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अदी टॉपिक कल नहीं होता तो हम आज ही अदा कर देते फर्ज और कर्ज। क्या बात है जी, क्या बात है। और ये हमारे चाचा खाले जुड़े, जो बिल्कुल आपका गाना हम लगाएंगे, बहुत अच्छा आज आपने गाना फरमाइश किया है। और ये हमारे साथ हैं जी, अर्ज किया है दिल में बसे हो जरा ख्याल रखना, वक्त मिल जाए तो जरा याद रखना, हमें तो आदत है आपको याद करने की, आपको बुरा लगे तो माफ करना। गुलाम शबीर तुनियो भाई फ्रॉम कंबर ओ आपी, आज गाना तो सुनाएं।

ओके जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं बाजी सदर आप कैसी हैं आज एक छोटा सा सवाल आपसे अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो आप क्या करेंगी हमें मास्टर मंजूर का गाना सुनाएगा थैंक यू डेडिकेट नजीर सोलंगी अली जान सोलंगी मुदरस सोलंगी आसिफ एंड फियाज अली सोलंगी के नाम ओके जी जो आपने मुझसे सवाल पूछा है ना उसका सवाल का जवाब ये है कि मैं बनना ही नहीं चाहती मैं बनूंगी नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है अंदर और ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम अदी टॉपिक कल नहीं होता तो आज मैं सारा दिन खाता और पीता बस गाल खत्म अच्छा मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ ही मीरपुर खास से वीआईपी प्रोग्राम में निगत नाज का गाना सुनाइएगा ओके जी आपका गाना सुनेंगे हम और आपको खुशामदीद कहते हैं इमरान भाई कहते हैं कि जड़े पंजाए पर जो किताब खोलियो सी तो हर सफेदे लिखल हो केर भी केंजो ना ही अली लगे तो तुख मिले उ भी पांचन की तरफा

कितना तक गाला है. फहीम शेख कहते हैं सिद्रा ये टूटू क्या है बताओ मुझे पता नहीं है. ये यही बात है कि अगर इस तरह के लोगों को बिठाया जाता है ना बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर फिर ये ऐसा ही होता है. हमें क्या मिला हमें क्या दिया तो बस आप छोड़ दें. ये एक ऐसी बात है जो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समझ आई होगी. तो आप

अकेले नहीं है, ये पूरी जनता आपके साथ है। अच्छा शोनी भी हमारे साथ मौजूद है जी। शोनी कहती है यहाँ पे देखे ना, मैं मम्मा को बोल रही हूँ जब तारिक भाई की शादी होगी तो मैं सारी शॉपिंग इस्लामाबाद से करूँगी। आप ही मम्मा बोल रही हैं कि उससे पहले तुम्हारी शादी कर दूंगी, तो अच्छी बात है ना अपनी शादी की शॉपिंग करना। ज्यादा फायदे में रहेंगी आप। या मैं भी आपकी मम्मा के साथ हूँ, ठीक है। अच्छा हमारे साथ है मौजूद आप कैसी हैं सिद्रा जी। कुछ दिन आमों के बाग में मसरूफ थे आम एक्सपर्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, चलें जी अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ 78 मोरी से राजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीरा लाल, पवन कुमार, संजय कुमार, सब भाइयों को वेलकम करते हैं। या हकीकत बाबा कुर्ब आज को पंद कराइंदो आ। जी तो असने प्रोग्राम में अचू था ये ना, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। अच्छा मौजूद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी ट्यूजडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्जे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? डियर व्हाइट एश सिद्रा मुस्कान क्रीम का नाम होना चाहिए था, फिर तो मैं गर्मी में भी यूज करती। चलें फिर आप अभी इस्तेमाल करके देख सकती है, क्योंकि ये भाई इतने मजे के प्रोडक्ट्स हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है आप लाजमी लगाइएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी है जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं।

हाँ बाबा अस्सलाम वालेकुम सुरू जाने, क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ अपनी कजिन के साथ. आज मेरी कजिन समी की एक फरमाइश है, शाहिद बबर का गाना सुनेगा. कोई सा भी सुना दूँ, चले मैं लगाती हूँ आपके लिए गाना. बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करती है. हमारी प्यारी लू भी हमारे साथ मौजूद है. और शोनी कहती है आप ही जान, वो मेरी. हाँ तो ऐसा ही होना चाहिए. बहुत शुक्रिया. अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे आप फेसबुक वालों. अच्छा सुमार किशोर भाई कहते हैं सुबह नथिए को सिद्रा या किशोर ना जो सुबह नहीं दो. अच्छा दर्दी दिल कहती रुको रुको मैं भी आ गई हूँ. अच्छो जो भी हो वे हो बिस्मिल्लाह. अनवर भाई हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद समान कहते हैं कल को स्कैप करते हुए आज और अभी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर देते हैं. योर टॉपिक आंसर बुआ जी, क्या बात है, क्या बात है, परचेज कीजिएगा. ठीक है. और फहाद अली हमारे साथ है, थैंक यू फहाद अली. अच्छा वो तो किशोर भाई सुबह दींदी ना, मां सुबहानी जी गाल कया थी. अच्छा आदिल कहती जवाब जे करे सुबाने न हो जे पेरियो अलार्म के किचरे में उछला चली नासी सुबह ड्रामा दिसंदासी हु कावड़ कंदो पर असी चवंदासी त वापस सुबाने कंदासी. जो मिठाई वारे खां बकिलो जलेबी उधार वठी अकेलो ही खत्म करे छडींदस. अज जो मजो सुबाने जो मसलो सुबाने दिसंदासी. ओ या गाल सुबाने वारा मानू जके ने डाठा मतलब अज कल असा के बेजार कंदा तो सुबाने ते कम न छडींदा कयो. इन लाइ मूं अवां खां सवाल पुछो त अगर सुबाने अचे ही ना हा त पोइ तव्हां छा कयो हा, पोइ कहिड़ो बहानो हुयो तव्हां वटि. ज़ीशान कहते इस क्रीम का मैंने स्क्रीन शॉट लेकर आगे सेंड कर दिया है, वो परचेज कर लेगी, अब मेरी कमीशन तो बनती है. इते भी कमीशन खपे. चलो तव्हांजी कमीशन जे बदले तव्हांखे गानो था ॿुधायो. ॿुधायो कहिड़ो गानो ॿुधंदा.

0: प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए, खूबसूरतियां बढ़ाते रहिए जनाब. और डायल करते रहिए 03-15-799-0595. जल्दी से नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और परचेज करते जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम. डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए. और यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आए. तो मौजूद
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.
3: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल.
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन.
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03-1-25-25-786.
4: जी हाँ 2-31-25-25-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़.

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सारे लोग, इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है भाईजान। और हमारी आवाज जहां जहां तक जा रही है, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद। और बताइए आप कहां कहां से हमारे साथ मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद है और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर औकात ऐसा हो जाए ना कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं और आप लोगों की स्किन सेंसिटिव और वो आड़े आ जाते हैं, और आप लोगों प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से थोड़ा सा दूर चले जाना होता है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन मजीद खराब हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते साथ ही आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के मुताबिक इसे डिजाइन किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर जो है ना वो विटामिन ई बीड्स मौजूद है, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही खुलूस के साथ और बहुत ही नई नई इस तरह की विशेष के साथ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी खूबसूरती उनको मिलेगी। और खूबसूरत रहने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल में आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स देता है। तो जल्दी जल्दी से आपने भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना, एक नाइट क्रीम है, इसे रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा और साथ में आपने इस्तेमाल करना है डी स्किन वॉश। और डी लगाएंगे इतना रिची रिची सा आपको महसूस होगा ना, यानी कि प्रोडक्ट आए जितने तवा इस्तेमाल करना तवा के अंदाजो थी वेंदो न शे जो छो त हिन जे अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम मौजूद आहे जेको तवा जी स्किन के हाइलो आहे, क्लीन कंदो आहे, आई मॉइस्चराइज कंदो आहे। सो एडो जबरदस्त प्रोडक्ट अगर तवा जे बल ना आहे तो उनके अवेलेबल करायो, आई डायल कयो 03 1 5 7 9 9 5। आवाज में जिनकी फरमाइश असांखे लुबी कई हुई कहा जाता है, प्रोग्राम में हमारे पास टाइम जो है बाकी थोड़ा सा बचा है, तो क्या कह रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत गाना। और साइमा मीर हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मक्खन जैसी आजे सिद्रो की आले, निगत आई भी और गई भी, मैनु पता ही नहीं चला टॉपिक कल ना होता तो के बाद क्या। और हाँ जी, निगत नाज आ भी गई और चली भी गई बेचारी। और शोनी कहती हैं आपकी जान कभी आतिफ का गाना भी लगाया करें। बिल्कुल बिल्कुल, शोनी के लिए लगाएंगे जी। और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ हैं जी आकाश अली, कहते हैं हाय आप कैसी हैं। आई एम आकाश अली पीर जादो, माई ब्रदर दिली जान पीर जादो मोरो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं ठूप चूसल से, टॉपिक अगर कल ना होता तो हम बोलते शाम को आ जाना, अगर शाम ना होती तो हम बोलते मामा दोपहर को आना, अगर दोपहर ना होती तो हम बोलते आधे घंटे के बाद आ जाना। हाँ, असम या एक क्वालिटी आए तो असम बहाना डाटा बढ़ाईंदा आयो। सो यह हकीकत सफ़ा, जबरदस्त तरीके से तुम्हारा टॉपिक एक्सप्लेन करो है, सो वेरी नाइस। किशोर भाई कहते हैं कि वफा मिले ना मिले, ए खुदा दगा ना मिले, कोई मिले या ना मिले, मगर किसी से मिला हुआ ना मिले। बाय।

अच्छा फहीम कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, ये इस्तेमाल करती रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. और चाचा खालिद कहते हैं मैंने रात आपका यूट्यूब चैनल देखा. हाँ बस मैं ना चीजों को ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों. आजकल तो कुछ ज्यादा ही मैं वो हो चुकी हूँ कि भाई बस क्या ही दिखाना, तो ये थोड़ा बहुत है मेरी तरफ से. इससे तो और ज्यादा है मेरे दिल के अंदर, और ज्यादा वाली शिद्दत. सना वाला बिरोही हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे. अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, डॉक्टर अब्दुल गफार शाहपुर से हमारे साथ हैं, सांगढ़ तालुका शहदादपुर. ओके जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं. और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ, एक मिनट, फहीम कहते हैं कि सिद्रा

ओके जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर सुन रहे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं. आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो उनके बारे में बताते हैं और आप इस्तेमाल भी करते हैं और आपको वो वाली खूबसूरती मिलती है जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं. तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए और डायल करते रहिए 03151 7990595.

किशोर भागे थे टॉपिक मजाक से हटकर मैं कभी आज के काम कल पर नहीं छोड़ता क्योंकि कल किसने देखा है ओ या गाल। और हमारे साथ ही जी दर्दे दिल कहती है कि एडो सोनो एडो सोनो आही तारीफ शाह चंदा जाना डेडिकेट हम सब की तरफ से आपको। मेरे साथ और आयशा जाहिदा शो सुन रही है और एंजॉय कर रहे हैं। चले स्वीटी आपका गाना हम कल सुनेंगे क्योंकि आप जानती हैं कि आज जो है ना वो लिस्ट फुल हो चुकी है। आपने थोड़ी देर फरमाइश कर दी। ये होता है जब आप देर से गाना फरमाइश करते तो आपका थोड़ा सा गाना स्किप हो जाता है, तो पहले पहले फरमाइश किया करें। अच्छा दीदार अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है कराची से, आप हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू। दर्द दिल कहती है कि एक दिन में सारे काम पॉसिबल नहीं, कल नहीं होता तो फिर परसों कर लेते। क्या बात है भाई, क्या बात है, आप लोगों का जवाब ही नहीं। अच्छा फहीम शेख कहते हैं कि मेरे बहुत करीब डी स्किन ब्यूरी क्रीम मिलती है क्योंकि मेरे रहता ही रेशम गली में हूँ। क्या बात है, मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि आपने डी स्किन ब्यूरी क्रीम परचेज करी या नहीं, लेकिन आपने खुद ही बता दिया। क्योंकि जो लोग रेशम गली में रह रहे हैं, रेशम गली के आस पास है, वहाँ अगर आप जाते हैं रेशम गली के अंदर तो आप लोगों को हर एक जगह पर जो है ना वो डी स्किन ब्यूरी क्रीम मिल रही है, डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, अवेलेबल हो चुका है और साथ साथ व्हाइट एज के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो फहीम आप व्हाइट एज लवली क्रीम भी परचेज करके देखिएगा, वो तो डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप परचेज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत वाले अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल जी, ये खास बातें हैं जो कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कल कॉल्स ली थी, कल वो चिचमिच वाली कॉल्स थी, ये मुझे अंदाजा हो गया कि एक दिन सही कॉल्स लग रही, दूसरे दिन चिचमिच वाली। तो कल चिचमिच वाली थी तो हम जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हजार खान कहते हैं कि अगर कल ना होती तो कल का शो भी आप आज कर लेती। हाँ कह सकते हैं।

अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सादा रहें, खास रहें और मुखलिस रहें, दुनिया काफी है अपने रंग दिखाने के लिए. बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. ऐसा नाला बिरोई, आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है. और हैं जी हमारे साथ हजार भाई, कहते हैं कि हम भी आपके साथ साथ हैं, शो एंजॉय कर रहे हैं. अदि लाजवाब जबरदस्त प्रोग्राम तमाम जो हले पायो मोहब्बतों प्यारे भाजू. और स्मार्ट गोपांग हमारे साथ मौजूद में भी आ गया. वालेकुम असलम, शो इज नाइस, थैंक यू.

0: दोस्त ना है
1: ये हकीकत है तब
0: मुर्की गलाइन वारो खो दोस्त ना है हूं दो
1: और मैं इतनी अच्छी हूँ मुझे लगता था कि जो भी वाकई जिसने हमसे दोस्ती करी है वो वाकई बहुत अच्छा है लेकिन यू नो दो यो गानो काश मैं पेरिया बुद्धि बैठा ममताज नोलाई जो ऐं मूंखे बि ख़बर पवे हा त वाकी बाबा हर हथ मिलाइण वारो दोस्त नाहे हूंदो इहा ॻाल्हि तव्हां बि यादि रखो अच्छा किशोर भाई कहते हैं शोहर और बीवी का रिश्ता तब तक गहरा होता है जब तक शोहर बहरा होता है यह हकीकत है और बीवी शायद गूंगी अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ स्क्रीन से आप हमारा शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया उसके लिए और हैं जी लाली कहती है जाने फिर दोस्त जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज थी वे आ चवे थी सिद्रा के बुधायो वाह वाह वाह वाह ॿारनि जा बि चैनल मोनेटाइज थी विया

बि ॾाढो भलो गानो ॿुधो पिया तव्हां असां बिलाल अली बि हमारे प्रोग्राम में आ चुके आहियूं वालेकुम अस्सलाम मां बि ॿुधिंग हाणे खां ॿुधिंग पहिरियां खां ॿुधिंग न ॾाढो मज़ो हुयो आज मुझे लग रहा है प्रोग्राम अच्छा था और मुझे लग रहा है कि अच्छे मूड में थी मैं आज और कहते हैं

हाँ जी, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। मुझे खबर ना लाइश मैडो के लिए आया बुधो थो ना जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। लाइफ कैसे भी चल रही लेकिन हमने तो मुस्कुराना है। गाल तो वैसे थी।

आशा निदा, ये आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बहुत अच्छा काम किया। अब लोग सोचेंगे निदा ने क्या किया है, वो नहीं बताएंगे। अच्छा फजीला कहती है प्यारी टिकटॉक यूज करती है? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब यूज करती हूँ।

0: अच्छा बिलाल समझते हैं पहले से ही इन गाल जो कहीं टेंशन ही ना आए कहो बाबा मानू छा चवंदा मानू छा सोचिंदा अगते थी हवा चंडे थकायल गाना वाकई लास्ट लिंक में असान लाइ हणंदा आहियूं जीअं जेके माण्हू ॿुधी ॿुधी प्रोग्राम हाणे सोचनि त हाणे बाबा वञण जो टाइम थियो आहे त हुननि खे थकायल गाना ॿुधाए छॾींदा आहियूं हुन जे मुंहं में थकायल गाना हणी छॾींदा आहियूं बाक़ी स्टार्टिंग में असां वीआईपी वीआईपी गाना ॿुधंदा आहियूं वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात असांजी सुभाणे थियण वारी छो त हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु जेको उहो ख़तम थी वियो आहे सफ़ा ख़तम थी वियो आहे अच्छा यूट्यूब यूज कैसे होता है ना असां यूट्यूब हलाईंदा आहियूं रेस ॾींदी आहियां सफ़ा फुल स्पीड में अरे मां सोचींदी आहियां अगरि यूट्यूब न हुजे हा त मुंहिंजी ज़िंदगी केॾी बोरिंग हुजे हा
1: अब आप सुनेंगे जीए एफ एम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पाकिस्तान जे लाइ पाणी रुगो कुदरती वसीलो न पर ज़िंदगीअ जो मसइलो आहे। सिंधु दरिया जे पाणीअ ते पाकिस्तानी क़ौम खे मुकमल हक़ हासिल आहे। पाकिस्तान जो पाणी रोकींदड़ खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। इस्लामाबाद में सिंधु दास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे सुत्समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सिंधु दास माहिदे ते पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़ह आहे। सिंधु दास माहिदे खे ख़तम या इन में तरमीम नथी करे सघिजे। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदो। सिंधु दास माहिदो दुनिया जे मज़बूत माहिदनि मां हिकु आहे। कंहिंखे बि इलाइक़ाई ऐं आलमी अमन यरगमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। कतर जे शहर दोहा में अमेरिका ऐं ईरान जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाकात थींदी या न? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाकात थियण जी दावा, ईरान जो इनकार। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान सां हलंदड़ हफ़्ते कतर में थींदड़ इजलास अहम साबित थी सघे थो। फीस वठण जी मुखालफत करे छॾी। उमानी परदेह वज़ीर बदर बिन हमद चयो आहे त आलमी बहरी रस्ते तां फीस उगाड़ण जा हामी न आहियूं। माहौलियाती तहफ़ ऐं नेविगेशन बाबति सर्विस चार्जिस ते रज़ाकाराणे नमूने ॻाल्हियूं करे सघजनि थियूं। करप्शन वारनि रेफरेंसिस खे ॿीहर एहतसाब अदालतुनि ॾांहुं मुंतकिल करण जो हुकुम। नैब जूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर, एहतसाब अदालतुनि जा अॻूणा फ़ैसिला। करप्शन रेफरेंसिस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण जी हिदायत। इक़बाल ज़ैद अहमद, अली रज़ा, इफ्तिखार क़ाइम ख़ानी ऐं अहमद हयात समेत ॿियनि ख़िलाफ़ अरबे रुपयनि जा रेफरेंसिस बहाल। पीजी कोटा मोकिलण जी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट फैसले में चयो आहे त जेकॾहिं गैर कानूनी भर्तियुनि सबबि मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे त सरकारी नुक़सान जी रक़म ज़िमेवार आफ़िसर्स जे पघार या पेंशन मां वसूल कई वञे। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश। अदालत पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जे कॉपीज़ जी ॿीहर चेकिंग जे लाइ पंज रुकनी कमेटी जोड़ण जी तजवीज़। अदालती तजवीज़ ते एडवोकेट जनरल सिंध जो एतराज़। दरख़्वास्तुनि ते मेरिट तहत फ़ैसिलो करण जी सदा। एडवोकेट जनरल चयो त पहिरीं दरख़्वास्तुनि जो ॿुधण जो हुअण बाबति फ़ैसिलो कयो वञे। अदालत चयो त सच जो साथ ॾियो, नौकरियूं अचणियूं वञणियूं आहिनि। मामले खे हमेशह लाइ हल करण जे लाइ गाइडलाइंस जारी कयूं वेंदियूं। जस्टिस निसार भमरो चयो त पैसा वठी कुझु माण्हुनि खे पास कयो वञे थो। जांच जे लाइ मामिलो नैब ॾांहुं मोकिले छॾियूं था। जस्टिस सलीम जेसर चयो त अदालत में बीठल सभु रोई रहिया आहिनि त नाइंसाफ़ी थी आहे। हिकु साहिबु आयो हो जंहिंखे लिखण बि न अची रहियो हो। मामिलो कमेटी ॾांहुं मोकिलियूं था, पास थींदड़ खां इम्तिहान वठंदी। पास थींदड़ सिंधी या उर्दू में बि मज़मून लिखी ॾेई सघनि था। हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उमीदवारनि जो रिकॉर्ड पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। ज़रिए मूजिब सेशन कोर्ट जो अमलो राति देर सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी हेड ऑफिस पहुची फेल उमीदवारनि जे पेपर्स जूं कॉपीज़ तहवील में वरितियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई। अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकमनि ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो, जंहिं बाद उमीदवारनि जो रिकॉर्ड ॾिनो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में 3 ॼणा क़तल। हैदराबाद में पुराणी दुश्मनीअ तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो, 1 ॼणो क़तल। नसीम नगर थाणे जे हदि अली पंजाबंदन ज़हूर अली सोलंगी खे क़तल कयो। जेकबाद वासी नौजवान कराचीअ में क़तल। चनापाड़े वासी नौजवान परवेज़ अहमद कटो खे शाह लतीफ़ टाउन में क़तल कयो वियो। हिंगोजा वेझो फुर दौरान मदामत ते मुमताज़ मारवाड़ी क़तल। पीछो करे ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा। उमरकोट वेझो स्कूल जी भित किरी पई, 3 ॿारियूं दॿिजी फौत। ॻोठ कमोरी में भित किरण सबबि सोगरा थी अबू बकर, किनज़ा थी अब्दुल समद ऐं रायबा थी फारूक कोरी दॿिजी वियूं। ॻोठाणनि ॿारनि खे भित हेठां कढी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुचायो, जिते डॉक्टर्स फोतकी जी तसदीक कई। ॿारनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारस नवारे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क।

0: दिल की आवाज
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: ए एफएम नान
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदळ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
2: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 03132525786
2: जी हां बुड़ी 6125525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं TFM ETH Network, सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

ये रेडियो का एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम होता है ये, कोई इसमें मतलब कोई मुकाबला तो नहीं होता, जो पहले नंबर पे कॉल करेगा उसे इनाम मिलेगा, या जो जो कॉल करेगा उसको हम 500 का बैलेंस देने वाले, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं होती।

0: की हो तो आवाज भी सिंह की है। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

बहुत से लोग जो है चाय बहुत शौक से पीते हैं और पीते चाय जो पीते हैं सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन चाय जो उन्हें दिन में 4 से 6 मरतबा लाजमी चाहिए होती है। तो यहाँ मैं आपसे शेयर करती चलूं कि चाय का सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले जो चाय पीते हैं उससे बदहजमी, पेट के दर्द में

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

नौजवानी में जिल्द पर चिकनापन बढ़ जाता है और दाने नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। पाउडर या फाउंडेशन लगाने से ये नुक्स आर्जी तौर पर तो छुप जाता है, मगर ये मसले का हल नहीं।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छपा हर गोशा,
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

वो कौन सा बैग है जिसे इस्तेमाल करने के लिए गीला किया जाता है? इस सवाल के जवाब के लिए आपने डायल करना है 03136615688। इरफान अली, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। और फातिमा, आपने राइट आंसर भेजा है एसएमएस में।

0: જીએ દા કે આન્સર એ સવાલ કા
1: અને જવાબ કોણ તો છે જવાબ સવાલ લખ્યો
0: ચલે ઠીક હે બહોત શુક્રિયા આપ શામ દે પ્રોગ્રામ હોય થેન્ક યુ ओके और गुड आलम खान जरवार से मोहम्मद अजीज जरवार मोहम्मद इदरीस जरवार आपको भी वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम हुए और फातिमा ने जो है हमें राइट आंसर बताया है अगर कॉल पे किसी ने राइट आंसर नहीं बताया तो फातिमा वाला आंसर ही जो कि राइट है हम आपको बता देंगे

शराब कहो तो आपको गुलाब। ओके बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट नहीं जी नहीं सैड तो नहीं हूँ फातिमा।

इश्क से इस चीज का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इश्क तो ये है कि महबूब के अदब में जो है इंसान की निगाह भी उसकी जानिब ना हो, लेकिन जिस्मानी जरूरत को इश्क का नाम दे के लोग एक दूसरे के जज्बों से खेलते हैं, मैं इन चीजों को नहीं मानती। रियल इश्क की डेफिनेशन कुछ और होती है, जो कि मौजूदा जमाने में ना होने के बराबर है। ये प्रोग्राम के जब आखिर के 5-7 मिनट बाकी होते हैं, उस वक्त क्यों याद आता है? कल भी आपने मुझे प्रोग्राम के लास्ट में कहा था, मैडम आपदा जी प्ले कर दें। मैंने आज के प्रोग्राम में मैडम आपदा का सॉन्ग प्ले किया था। अब मैं दोबारा आज आपसे माजरत करूंगी, क्योंकि 2 मिनट है अभी, आपका फरमाइशी सॉन्ग आज नहीं प्ले कर पाऊंगी। अगर कल प्रोग्राम किया तो कल प्ले कर देंगे।

दुनिया मचलते जाना, अंधेर नगरी में चलते जाना, हसीन कलिया मचलते जाना, और अपनी फितरत पे मुस्कुराना। अगर मोहब्बत ही है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है, तो माफ करना मुझे नहीं है।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ये जो मसलो आहे हर सूरत में सिंतास माहिदे जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। पाकिस्तान जो पाणी रोकींदड़ खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे सिंध समाव वारे फाकी वज़ीर अताला तरण चयो आहे त सिंध तास माहिदे ते पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। सिंतास माहिदे खे ख़तम या इन में तरमीम नथी करे सघिजे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदो। सिंतास माहिदो दुनिया जे मज़बूत माहिदनि मां हिकु आहे। कंहिंखे बि इलाक़ाई ऐं आलमी अमन यरगमाल बणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

ईरान सां ॻाल्हियुनि लाइ अमरीकी नुमाइंदा दोहा पहुची विया। कतर पारां तस्दीक। कतरी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमरीकी नुमाइंदो स्टीव विटकॉफ ऐं जेरिड किश्नर दोहा में मौजूद आहिनि। संदन ईरानी अमलदारनि सां सिधी रीत मुलाक़ात न थींदी। अमरीकी नुमाइंदा सालिसी जो किरदार अदा कंदड़ धुरियन सां मुलाकातूं कंदा, ॻाल्हियुनि दौरान थींदड़ अखबराई ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कंदा। तेहरान जा मुंजबित कयल $6 अरब जा असासा बि अञा ईरान ॾांहुं मुंतकिल न आहिनि थिया।

0: ओमान अपना हुर्मुज से बहरी जहाजन का ट्रांसिट फीस वठण की मुखालफत करे छी। अमानी परडेही वजीर बदर बिन हमद है त आलमी बहरी रस्ते ता फीस उगाण जा हामी नहीं। माहौलियाती तहफुज ए नेविगेशन बाबत सर्विस चार्जेस ते रजाकरणी नमूने गाल सकजन थियं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो GAFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252586।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5576
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: FM. GAFM 88 Network. सिंध की आवाज.
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज. GAFM 90.4.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

बीहर पढ़न बियाई। बल बल पढ़न दिए यार सजर दी हूं ता कु जुदाई मुस्लिम विचों का।

अदा मजबूर आशिक के मेरा यार दोस्त रोकिन था तू मैंने महबूब समिलन न वन तुझा दुश्मन तोखे होते तुझा वेरी मारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो रजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पोंदो मां त घणो पहले पान खे रोचा पर छा करया मुझ दिल नथी रहे।

के हो तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

अमन लाइ सिलेंडर नथो करे सघिजे। सिंतास माहिदे जो बरकरार रहणु ज़रूरी आहे। सामूंडी रस्तनि ऐं आबी वसीलनि जो हथियार इस्तेमाल आलमी अमन लाइ ख़तरनाक आहे। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त सिंधु दरिया जो पाणी पाकिस्तान जी ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। माहिदे जो ताल्लुक कंहिं हिक दौर सां नाहे, पाकिस्तान पाणी रोकण वारी कंहिं कोशिश जो भरपूर जवाब ॾींदो। सिंतास माहिदे जी बहाली खां सवाइ भारत ऐं पाकिस्तान विच में जटाधार अमन मुमकिन नाहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जग जा विज न पोखण जो मशवरो ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान आबी हक़नि ते कब्ज़ो क़बूल न कंदो। पाणी रोकण वारियुनि कोशिशुनि खे जंगी क़दम सम्झियो वेंदो। भारत ॾखण एशिया जे अमन ऐं इस्तेहकाम खे ख़तरे में न विझे। वफ़ाक़ी वज़ीर अल्ला तरण चयो त पाकिस्तान लाइ पाणी रुगो क़ुदरती वसीलो न पर ज़िंदगीअ जो मसइलो आहे। सिंतास माहिदे जो हर सूरत में तहफ़ुज़ कयो वेंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बिठा न कंदो। कंहिंखे बि इलाक़ाई ऐं आलमी अमन यरगमाल बणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान सां ॻाल्हियुनि लाइ अमरीका नुमाइंदा दोहा पहुची विया। कतर पारां तस्दीक़। कतरी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमरीकी नुमाइंदो स्टव विटकोफ ऐं जेरिड किशनर दोहा में मौजूद आहिनि। संदन ईरानी अमलदारनि सां सिधी रीत मुलाकात न थींदी। अमरीकी नुमाइंदा सालिसी जो किरदार अदा कंदड़ धुरियन सां मुलाकातूं कंदा। ॻाल्हियुनि दौरान थींदड़ अगभराई ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कंदा। तेहरान जा मुंजमद कयल $6 अरब जा असासा बि अञा ईरान ॾांहुं मुंतकिल नाहिनि थिया।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
1: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: हाय हाय हाय।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लाहौर जे इलाके कायना में ट्यूशन सेंटर जी छित किरी पई, 14 शागिर्द दबजी फोत, केतरा ही जख्मी, कुछ जी हालत नाजुक। रेस्क्यू अमलदारन मूजिब बारन जी ट्यूशन पढ़ण दौरान वाकियो पेश आयो। किरियल छित मथा बी मंजिल तामीर थी रही हुई, वधीक जांच जारी आहे। अमन लाइ सिलेंडर रथो करे सघजे, सिंतास माहिदे जो बरकरार रहण जरूरी आहे। सामुंडी रस्तनि ऐं आबी वसीलनि जो हथियार इस्तेमाल आलमी अमन लाइ ख़तरनाक आहे। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त सिंधु दरिया जो पाणी पाकिस्तान जी ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। माहिदे जो तालुक कंहिं हिकु धुर सां नाहे, पाकिस्तान पाणी रोकण वारी कंहिं कोशिश जो भरपूर जवाब ॾींदो। सिंतास माहिदे जी बहाली खां सवाइ भारत ऐं पाकिस्तान विच में जटादार अमन मुमकिन नाहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जंग जा विज न पोखण जो मशवरो ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में सिंतास माहिदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान आबी हक़नि ते कब्ज़ो क़बूल न कंदो। पाणी रोकण वारनि कोशिशनि खे जंगी क़दम समझो वेंदो। भारत ॾखण एशिया जे अमन ऐं इस्तेहकाम खे ख़तरे में न विझे। वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो त पाकिस्तान लाइ पाणी रुगो क़ुदरती वसीलो न पर ज़िंदगी जो मसइलो आहे। सिंतास माहिदे जो हर सूरत में तहफ़ कयो वेंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदो। कंहिंखे बि इलाक़ाई ऐं आलमी अमन यरकमाल पाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आबादी ते कंट्रोल लाइ नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि मुल्की आबादी बाबति इजलास थियो। शहबाज़ शरीफ चयो त वधंदड़ आबादी मुल्की तरक़ी ॾाढो वॾो चैलेंज आहे। वधंदड़ आबादी सबबि क़ौमी वसीलनि ते दबाउ वधी रहियो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए
1: एफएम सिंध की आवाज।
3: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: लाहौर जे इलाइक़े काहिना में ट्यूशन सेंटर जी छितकिरी पई, 14 शागिर्द दॿजी फोत, केतिरा ज़ख़्मी, कुझु जी हालत नाज़ुक। रेस्क्यू अमलदारनि मूजिब ॿारनि जे ट्यूशन पढ़ण दौरान वाकियो पेश आयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी पारां अफ़सोस जो इज़हार। वज़ीर आज़म साने जी रिपोर्ट बि तलब करे वरिती। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी जे यू आई सरबराह मौलाना फज़ल रहमान सां मुलाक़ात। मुल्की सियासी ऐं आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल जो पुरमन ऐं सियासी हल चाहियूं था। जे यू आई ऐं पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में पहिरियों भेरो इतिहादु थियो आहे। सिंध, बलूचिस्तान, जी बी ऐं ॿियनि हंधनि ते जे यू आई सां गॾिजी हुकूमत चाढ़ण चाहियूं था। मौलाना फज़ल रहमान चयो त पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत जी दावत ॾिनी आहे, जंहिं ते फ़ैसिलो पार्टी कंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो सियासी आहे, ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघे थो। महाजरनि जी सीटनि ते बि दलील ज़रिए ई ॻाल्हाए सघिजे थो। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहान ऐं नतीजनि ख़िलाफ़ दरख़्वास्तनि ते हुकुम जारी करे छॾियो। दरख़्वास्त गुज़ारनि जी कापियुनि जी आईबीएस सखर खां ॿीहर जांच कराइण जो हुकुम। सिंध हाई कोर्ट जी आईनी बेंच ॿुधणीअ जो लिखत में हुकुम जारी कंदे चयो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ वॾी तादाद में दरख़्वास्तूं आहिनि। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ दरख़्वास्तूं ऐं मौजूदा मामिलो ग़ैर मामूली आहे। कमीशन ते रिश्वत, पंहिंजा नवाज़ी ऐं असर रसूख ज़रिए नतीजा तब्दील करण जा संगीन इल्ज़ाम आहिनि। लिखत वारे इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी वारनि उमीदवारनि खे इंटरव्यू में पासिंग मार्कू न मिलण हैरत जोॻो आहे। आईबीए सखर पंहिंजी निगरानी में लागापियल प्रोफेसर्स खां जवाबी कापियूं ॿीहर चेक कराए उमीदवारनि जी जवाबी कापियुनि जी गैर जानिबदार जांच कराई वञे। कापियूं लागापियल मज़मूननि जा प्रोफेसर चेक। ऐं बबरलो में प्रिया एक्शन कमेटी ऐं गुम थियल बार्डन वारिसनि जो 5 ॾींहं बि धरणो जारी। प्रिया कुमारी, उजाला सोलंकी, सभा करोड़ो, नवीद लाशारी, आसिफा मुकल, खुशी ऐं ॿियनि गुम थियल मासूम बार्डनि जी बाज़ियाबी जो मुतालबो। मुज़ाहिन चयो त सिंध मां गुम थियल ॿारनि खे जल्द बाज़ियाब करायो वञे।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हा, 231 5 5786
1: GFM रेडियो नेटवर्क।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 8:15.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
3: सुनते रहो GFM 90.4.
5: आओ सब्जी वालो, ताजी सब्जी खाओ, अदा गोश्त महंगो, मुर्गी महंगी, मच्छी महंगी, ताजू सब्जी खाओ, सेहत बनायो. आओ सब्जी वालों.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

लाहौर जे इलाइक़े काहिना में ट्यूशन सेंटर जी छित किरी पई 14 शागिर्द दबजी फोत केतिरा ई जख़्मी कुझ जी हालत नाज़ुक रेस्क्यू अमलदारनि मूजिबि ॿारनि जी ट्यूशन पढ़ण दौरान वाकियो पेश आयो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां अफ़सोस जो इज़हार वज़ीर आज़म साने जी रिपोर्ट बि तलब करे वरिती अमन लाइ सिलेंडर नथो करे सघिजे सिंध तास फ़ाइदे जो बरकरार रहण ज़रूरी आहे सामूंडी रस्तनि ऐं आपी वसीलनि जो हथियार इस्तेमाल आलमी अमन लाइ ख़तरनाक आहे इस्लामाबाद में सिंध तास फ़ाइदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त सिंधु दरिया जो पाणी पाकिस्तान जी ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे फ़ाइदे जो तालुक़ कंहिं हिकु धुर सां नाहे पाकिस्तान पाणी रोकण वारे कंहिं कोशिश जो भरपूर जवाब ॾींदो सिंध तास फ़ाइदे जी बहाली खां सवाइ भारत ऐं पाकिस्तान विच में जटादार अमन मुमकिन नाहे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जंग जा बिज न पोखण जो मशवरो ॾेई छॾियो इस्लामाबाद में सिंध तास फ़ाइदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे इसहाक डार चयो त पाकिस्तान आप ई हक़नि ते कब्ज़ो क़बूल न कंदो पाणी रोकण वारियुनि कोशिशुनि खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो भारत ॾखण एशिया जे अमन ऐं इस्तेहकाम खे ख़तरे में न विझे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो त पाकिस्तान लाइ पाणी रुगो क़ुदरती वसीलो न पर ज़िंदगीअ जो मसइलो आहे सिंध तास फ़ाइदे जो हर सूरत में तहफ़ुज़ कयो वेंदो वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदो कंहिंखे बि इलाक़ाई ऐं आलमी अमन यरकवाल पाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी ईरान सां ॻाल्हियुनि लाइ अमरीका नुमाइंदा दोहा पहुची विया कतर पारां तस्दीक कतरी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमरीकी नुमाइंदो स्टीव विटकॉफ ऐं जेरिड किशनर दोहा में मौजूद आहिनि संदन ईरानी अमलदारनि सां सिधी रीत मुलाक़ात न थींदी ईरान जो को बि आलताई नुमाइंदो कतर में मौजूद नाहे अमरीकी नुमाइंदा सालिसी जो किरदार अदा कंदड़ धुरियुनि सां मुलाकातूं कंदा ॻाल्हियुनि दौरान थींदड़ अॻभराई ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कंदा तेहरान जा मुंजमिद कयल 6 अरब डॉलर जा असासा बि अञा ईरान ॾांहुं मुंतकिल नाहिनि थिया सुभाणे दोहा में ईरानी वफ़द जी कतरी सालिसनि सां मुलाकात थियण जो इम्कान आहे आबना हरमुज़ में परडेही मुदाख़लात मसइले खे वधीक ख़राब कंदी ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका सां थियल वाइदे ते अमल दरामद लाइ कतरी सालिसनि सां ॻाल्हियूं थींदियूं वाइदे जी पहिरीं शिक में लबनान शामिल आहे दोहा में ईंदड़ कुझु ॾींहनि दौरान अमरीकी वफ़द सां मुलाक़ात जो इम्कान नाहे अस्करी न पर सियासी आहिनि

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।